परमेश्वर आप होवा रखवाला, परमेश्वर आप होवा रखवाला। शांत सहज सुख खिन में उपजे।

इतनी सेवा प्रवान कर लो धनता दे जो कोई जो भी आप साहेब गुरु ग्रंथ साहब जी जूरी हजर बैठ के हरी जस हरी कीर्तन बड़ी श्रद्धा से भावना ना सवन करो सुरदास जी अपने उच्चे भाग समझ गए आप वर्गी साध संगत के दर्शन करने का सुभाग प्राप्त होया है जेडे कि गुरु ग्रंथ साहब के रागा के शौकी है नहीं तो ज्यादातर गुरुद्वारा फिल्मी कीर्तन चलता है जिन्होंने कहते अस वे वे रागी हैं संत बनते हैं सब फिल्मी टूना गा रहे हैं महाराज बख्श कर सारे साल गुरु के बख्श बराबर रखने कीर्तन सुनने की श्रद्धा बख्शन आओ अंत सरबत माई भाई जितने गुरु चरणा बैठे हो छोलियां अड़के यही अरदास बेनती जोदड़ी करनी है अकाल पुरख अगे ये शक्तिमान परम पिता परमेश्वर जी आप जी कृपा करो सारी छोलियां अपने पवित्र नाम की खैर पाओ जपो सारे कोई इस ना

गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदरूप असूत अंगहीन अभंगनातम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व घायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनभेख सर्वशास्त्र

अर बर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनाश मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशिज अंग आसन भंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस व्यंत अनुभव अनास तिर तुर

पांच में से कथित रथवा हो बुजुग फेर बटाय जन दू देता हो सज रसो का धर्म फेरतवा हो व्यक्ति रखते का जो

लिखी ते कुमारे गुरती जी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के नाम विचारे।

हमारी जेबा एक ग्राम हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जाए हर तुम बड़ अगम अथाह।

0: निर्वैर पुरुष सतगुरु प्रभु दाते,
1: निर्वैर पुरुष
0: सतगुरु प्रभु दाते, हमें अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को

तू मेरो प्यार हो तो कैसी भूखा, भाव मेरिया सारिया भूखा तेरे प्यार नाल ही दूरिया दूर होंदिया। सो नाम वाला जो है उसके नाल महाराज जी का प्यार है। इसे करके कहते हैं मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए, ऐ मेरे प्रीतम। प्रीतम बहुत प्यार दे नाल आख्या होया एक्सप्रेशन है, ऐ मेरे प्रीतम तेरा नाम जदों तक मेरे ध्यान च है मैं अपने आप नूं जिंदा महसूस करना, ते तो विछड़ना मेरे वास्ते मरण समान। तू मेरो प्यारो तक कैसी भूखा, और आखते हैं अमृत प्रियता नाम प्रिया प्यारा। कहते हैं मेरे प्यारे का जरा नाम है ना वो अमृत है, वो मृत्यु तो रहत है, इतना महान है। सो इत्थे एक प्यारा आंदा है, इत्थे एक हस्ती आंदी है, इत्थे एक ऐसी शख्सियत आंदी है जिसके नाल महाराज जी का प्यार है, अते उस प्यार करके महाराज जी नूं उसका नाम प्यारा लगता है। सात संगत जी, मैं आप जी के सामने थोड़े जहे प्रमाण रखन लगा हाँ जिन्हां च बार बार बार बार लफज आएगा नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार। ध्यान नाल सुन, एक ही लफज आएगा बार बार हरेक लाइन च नाम प्यार। कहते हैं

गुरु महाराज जी के पास वो नाम वाला है, उस नाम वाले दे नाल महाराज जी का प्यार है, उस दे नाल मुहब्बत है। इस करके गुरु महाराज जी नू उस दा नाम प्यारा लगता है। इथों दो नुक्ते सिद्ध हुंदे हन। नंबर एक कि गुरु महाराज जी का अगर उस नाम वाले दे नाल प्यार है ते गुरु महाराज जी ही सानू उस नाम वाले तक ले जा सकते हैं। गुरु महाराज जी ही उस नाम वाले नाल साडा प्यार पवा सकते हैं, क्योंकि प्यार किसी ना किसी एक्सपीरियंस के बेस उते हुंदा है। उस नाम वाले दे नाल सानू मिलांगे, उस नाल मिलन दे नाल जो सानू एक्सपीरियंस होएगा वो इतना वंडरफुल होएगा, इतना मैजिकल होएगा, इतना मिरेकुलस होएगा कि इंस्टेंटली वी विल फॉल इन लव विद दैट। पर जब तक असी उसको मिलांगे नहीं, उस नाल प्यार किवें हो सकेगा? तो प्यार पाउण दे वास्ते कोई विचोला चाहिदा है जिहड़ा उसको जानदा होवे, उस तक पहुंच रखदा होवे अते दूसरे नूं उस तक लजा सकदा होवे। उही प्यार पवा सकता है ना। हुण असी महाराज जी तो आओ गुरबाणी चों पुछिए, सच्चे पातशाह साडी समस्या यह है कि साडे पास प्यार नहीं है। आप जी का तो प्यार है पर साडे पास प्यार नहीं है, तो फिर साडा प्यार किस तरह पवे? सवाल मेन इशू यह है, महाराज जी आप जी दे घर रब ही रब है और उसका नाम ही नाम है, आप जी नू वह भी प्यारा है, उसका नाम भी प्यारा है, पर साढ़े ते तरस करो ना, तो असी उसनू जानते हैं ना, साडा उसके नाल प्यार है। क्योंकि जे प्यार होवे तो फिर यह किस तरह हो सकता है कि साडा उसका नाम जपन च मन ना लगे? यह किवें हो सकता है? जे प्यार होवे तो नाल मन ना लगे? जदों प्यार हो जाता है उदों टाइम एंड स्पेस दोनों भुल जाते हैं। तो सानू नाम जपन लग्या नू कदे लत थक जाएगी, कदे कमर दुखेगी, कदे कुछ होएगा, कदे इचिंग होएगी, और असी टाइम देखते रहांगे। एक घंटा सानू नाम जपन लिए आख्या जाए तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है। तीन घंटे की असी पिक्चर आराम नाल देख सकते। सो साडा प्यार नहीं, लेट अस एडमिट दिस। गुरु महाराज जी का प्यार है उस नाम वाले दे नाल, ते जिस दे नाल प्यार होवे उहदा नाम भी प्यारा लगता है और उस दियां सारियां ही चीजां प्यारियां लगदियां हैं। मेरा नाम ही नहीं, जिस दे नाल प्यार होवे उसकी हर वस्तु प्यारी लगती है। इस करके महाराज जी ने आख्या है, तेरे नाम अनेका रूप अनंता कह न जाई तेरे गुण के ते। उस दे नाल प्यार है करके कहते हैं तेरे अनेका तेरे च गुण हैं, क्योंकि जिदे नाल प्यार होवे उच ही गुण नजर आया करते हैं। जिदे नाल प्यार ना होवे उच भावे गुण भी होण तां भी अवगुण दिसिया करते हैं। महाराज जी कहते हैं तेरे अत्यंत गुण हैं, अते उस दी हर चीज तो महाराज कहते बलिहारी कुदरत वसिया, कहते तेरी कुदरत तो भी मैं बलिहार हूं, तेरी कुदरत तो मैं बलिहार हूं। यह सब कुछ क्यों है? क्योंकि फाउंडेशन जो है वह प्यार दी है। महाराज जी का उस नामी दे नाल प्यार है, उस दे नाम नाल प्यार है, उस दी रचना दे नाल प्यार है। इत्थों तक कि असी तो अपने आप से कई दफा कर्ज करते हैं कि सानू लाइफ क्यों मिल गई है, वट टू डू विद इट वी डोंट नो। समटाइम वी इवन गो टू द एक्सट्रीम ऑफ टेकिंग अवर ओन लाइफ। पर महाराज जी आखते हैं वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम की है। उस दे नाल प्यार होण करके महाराज जी अडोर करते हैं कि तू कमाल है, किस तरह का तू सानू बनाया है। कहते हैं वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम की है, जिसने रचना रच के सानू बनाया है,
कितनी खूबसूरत रचना है। अते महाराज जी नूं वाहिगुरु नाल प्यार होण करके उसकी हर चीज इतनी प्यारी लगती है कि गुरु महाराज जी इस

जवाब है बाणी। संतां संगत मिल रहे, क्योंकि संत प्रेम ही प्रेम हुंदे हैं, प्रेम रूप हुंदे हैं। संत स्वाय प्रेम तो अलावा और कुछ नहीं। ताई तो महाराज जी ने आख्या है, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कहते मेरी सारे नाल ही बनती है साड़ी, ध्यान नाल अपनी जिंदगी देखो, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, साड़ी बनती किस दे नाल। पर गुरु बाबा जी आखते हैं सगल संग हमको बनाई, कहते मेरी सारे दे नाल ही बना दी है, मेरे सारे नाल ही प्यार है। कहते प्रेम किवें लभ सकता है, इसनूं सुनो और नोट कर लियो बाद दे विच। कहते हैं संतां संगत मिल रहे तां सच लगे प्यार। इस तो भी होर स्पष्ट सिंपल करके आख्या, कहते हैं संत सहा

मैं उन्हां दे चरनी लगदा हां, मैं उन्हां दे पैरी लगदा हां। कहिंदे संत सहाई प्रेम के, संत ही हन जो हेल्पफुल हन, जो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो आप प्रेम दे नाल भरे हुए हन, अते ओ क्योंकि प्रेम दे नाल भरे हुए साडे अंदर वो प्रेम जगा सकते हैं। इस करके कहिंदे मैं संतां दे चरनी लगदा हां, पर साडी ईगो तो सानू झुकनी ही नहीं दिंदी, असी तो किसी चरनी लग ही नहीं सकते। पर बाणी ते आखदी है साडे अजिहे कॉन्सेप्ट बन गए हैं कि असां गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो अलावा किसी ने मत्था नहीं टेकना, और उस दे नाल असी इतने हंकारी हो गए हैं कि कोई भी शख्सियत आ जाए, कोई गुणवान आ जाए, पर असी झुक नहीं सकते क्योंकि साडी ईगो ऐसी, और जब तक असी चुकांगे नहीं असी समझ लो पत्थर हैं, और पत्थर च भी कदे प्रेम पैदा हो सकता है। महाराज जी आखते हैं संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागों पाए, जे पैरी लगना चरनी लगना गुरमत दे विच उल्ट हुंदा ते आपंक्ति क्यों लिखी हुंदी। वो कहते हों तिनके लागों पाए, वो इतने महान हैं कि वो प्रेम का ही सागर बने पए हैं, उन्हां दे मैं चरना दे उते लगदा हां, चरनी लगदा हां, पैरों ते मत्था टेकदा। संत सहाय प्रेम के हां तिनके लागो पाए, सिर्फ ओही हैं जो साडे जीवन दे विच प्रेम पैदा कर सकते हैं। उसकी अगे चल के विचार कीती जाएगी अगले कीर्तन च कि वो किवें करदे हैं। प्रेम किवें प्राप्त किया जाए, हुण इस उत्ते प्रमाण चल रहे हैं। अगला प्रमाण कहिंदे हन मन रे राम जपो सुख होए, कहिंदे हन मन रे राम जपो, पर महाराज जी राम नाल ते सारा प्यार ही नहीं है, उसनु जपिए किवें, जब प्यार ही नहीं है उसनु जपिए किवें। पहली अद्धी पंक्ति च आख्या है मन रे राम जपो सुख होए, भाई उसनु जप के सुख होएगा, पर जब उदे नाल प्यार ही नहीं है तो उसनु जप किदा लईए। ए मनुआ दैन दिसदा हमरा, ओ कैसे हर गुण गावे, ए मन ते दस दिशा दे विच दौड़ा फिरदा है, किवें उदे प्रेम नाल गुण गावे, प्रेम ही नहीं है। पर अगली लाइन दे अद्धे हिस्से दे विच फिर जवाब दे जांदे हन कि प्रेम किवें मिल सकदा है। कहिंदे हन मन रे राम जपो सुख होए, परंतु अगला हिस्सा पंक्ति दा कहिंदे हन

राग सारंग सदियों तो प्रचलित एक सरल मधुर अते लोकप्रिय राग है। अनेक लोक गीतां दियां धुनां इसे राग ते आधारित हैं। चरवाहियां दी वंजली अते सपेरे दी बीन उते इस राग दियां मधुर सुरावलियां आम सुनाई दिंदियां हैं। सपेरे दी बीन चों जदों सारंग दी धुन निकलदी है तां सप मस्त होके नच उठदा है। सारंग दा प्रभाव अति ठंडा है, इसलिए सिखर दुपहरे गाया जांदा है। गुरु महाराज ने सारंग राग विच मन दी तपश मिटा के ठंड वरताउण लई सारा मजमून ही गुरु शब्द दी महानता दा रख्या है। यह पता भी दिता है कि नाम दी कमाई सतसंगत विच ही हुंदी है। काल खाए किछ हथों दे नानक राहो पछाणे से, इसका उपदेश इस राग विच है। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दोनों निषाद लगते हैं। गंधार अते धैवत बरजत हैं। वादी ऋषव अते संवादी पंचम है। गायन समा है दिन दा तीजा पहर। सारंग राग विच पहले शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर परमजीत सिंह जी। शब्द दी आरंभिक तुक जप मन जगन्नाथ जगदीशरो अते दूसरे शब्द नूं गायन कर रहे हैं भाई दिलबाग सिंह भाई गुलबाग सिंह जी। शब्द दी पहली तुक है हर हर संत जना की जीवन। सरवण करो पहला शब्द जप मन जगन्नाथ जगदीशरो।